सब नीति आईया जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरु मुख लाधा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया।

ला तित सर वरड पिन निवास पाणी पावक तन किया पंकज मो पग नहीं चाला हम देखा तह डूबले मन एक न चेतस मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया।

नाम सरंग जाम लाग भव जल तरन के जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाओ जप तप संजम

बैरन का आज संकरिया, पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें चांड कोई अबर न त्याऊं।

सा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजाइयो। आद अंत एक

हरी। शिव कनको शिव गुण सुख दियो, सतरन को पद मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछण, कट कट के पट पट की जान। जब उदकर खरा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा। जब आकर खरा तो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन

नर सिख संकरो दुष्ट जिते ओठ बतोत पाता सकल मलेच करो रण काता जे अस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख दुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्या है ताके काल निकट न है रचा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट तर तत्काला।